फुंका हम मार्केटिंग ताकू खूब एफ एम उच्च इंतुनी फुंका संग कॉक ब्रॉक पांडव नरक जो तो ना लाम सुगो खनाई तो नेरुपनो 101.6 एवं सारा सपोन डॉक मेगा हर्ट जो नरक बैठोंग तापोस तो ना ताकू तो ना किचिंग तेरे नरक पांडव खनाई तो बायो और 1.0.6 एवं सारा सपोन डॉक मेगा हर्ट जो मार्केटिंग ताकू खूब जो इंतुनी कॉक सालाई नहीं साल कमा पांडनी कॉक या फांग एवं ट्रॉपिक तो ना सुकांग नो किसी सावी खनाई नहीं तीन कक या फंखा बांगला बनता किरीदी सीसे सीदी मारे कि बांगला बुफ्रु फाइन जंगसीया बांगला फाइक जो गासीब मानजा फाइनगे फानो फाइन ते बुफ्रु फाइन आबाब सिया फिबा बांगला फाइमान न गासीमिया फानो बांगला बैदेरा मानो जो सेंग्रे मानो जो किसा खाई मानो खाई मानो बनी बाकी मार्केटिंग ताकू बखूब बांगला नो जिन गिरी बांगला फाइक तम खाई नई बांगला बै देरा बाकी जो तम खाई मान सकान तीयारंगी मान ओ तीयारंग कक्रक जिन सिलई नरक बोसादी आंग बोसाई सामानी बिंगते जो गाहम खाई सिलई तम हिमालय जिन त्रिपुरा हास्ते बांगला फाइट थक आमजानी बिंगो गलाय नरक कल खाने तपकदी 2-3-2-6-2-5-3 2-3-2-6-2-5-3 ओ नम्बर नरक बैठ तापस रन किचिन नरनी ताकू फाइ ताबु खाने लब मूंग रिजाब मूंग लब मूंग रिजाब मूंग रिजाब खाने लता देव बर्मा

0: खा आरो बुद्धि गोनां बर'क सारि सारि खरकसा बुखुक बिनि सारि खेङै रेवै सारि बा एकैजन बर'कनो थांमानि अब जों नुखा एदि बा खनाका त्यो बांला फाइमानि त जों गासैबो मानिया बर' फाइनाय बसिया फिया बा जों तियार गाहामखै इमान खाङाय बांला फाइखे ताम खाइनायाबो सिखा हेंगे जों ओ देरामानिनो सेंग्रेवै मानो खाइ मानो हेदिबा अबनो जों दिनै कक सालाय दंलायनाय कक सालायनाय बांला फाइखे ताम खाइनाय फाया जानो सिगां ताम खाइनाय बाहायखे ट्रेनिं रिलायनाय सिलायनाय अबरकनो सालाय दङ दायखौ हायदा बांला त त्रिपुराओ फाइटक फाइटक हास्ते आमचानि बिसिंख्लाय जों त्रिपुरा हास्ते आबनि बागैता ओंखायनो नों नोंसाजों सानाय जा दो छयटा उन्निस बाजिखा जों पचिस जरा कक सालायनाय सारि दो
1: जमराजान
0: थां सायता बरक मुसरक थै थांबायका आं खि मासालिया नै थां सायका हेंके कबि कबि दा थै थांबाय गे हेंदि जांगिरि नाय हिंता
1: ए जांगिरि नाय फंके सों आं जे सायनाव थावन ता दारा हेंके सों बांगला फाके बाक्सा जग लखाबो कमि फोना
0: आबो आबो बरर पुतु खाले मन ता कमि तो कमि आथ जग लखाय फे बांगला फाइकना हेनि सायमानो हेदिबा दो सादे
1: ए ए आमा के ke zawlo lai khang as ta sha kom yo ama hai ne chao ta gin bura buri
0: abo hanke tin borok puitu khlai mani bangla phai pro tam khlai na nang bahai ke sing silai ne abo kaisa signal relai mani abo kaham no hai diba pia ba science bigyan tam sa abno sing tin salai nai bangla phai pro sing tam khlai nai phai pai ke tam khlai nai hai diba
1: e
0: abo sikai sadi ang bo sanai
1: dar tam pai kaisa sadi man dara
0: रबीन्द्र मारे जिन खूब जिन कक सलै दंल बांगला बांगला बुफ्रु फाइनसिया जिनो सासावी फाया बांगलानो जो गासैबो मानिया फियाबा बांगलानो बुफ्रु फाइनसिया गासै मानिया फानो बांगला फाइके जों दाम खाइनाय फाया जानि दाम खाइनाय अबनो जों सिउ मानो जापान हाकतर हायनि बिसिङ बांगला फाइकुकनै हाकतर आमचाय होनै जों सिनिब सायमानो जापाननि बर' रखेखाय ओ बांगलानो कासे देरामुं नित बर'क चङै नाखानो फियाबा बर'कनि सालब्रुम ब्रुमनि लांमाव ओ बांगला आब' कायसा बर'कनि मानजाकथाय बर'नि ख्लायथाय कासुथाय आब' हाय होनै बर'क चङै नाफन बनि बागै बर'खाय जापाननि बर' रखनायखाय बर'क नक दांफ्रु आर्ट क्वेक प्रुफ बांग्ला फायबो नक बायाजात बर'क आमटिखे नकनि डिजाइन बिल्डिंनि डिजाइन खालायबो दे आर्ट क्वेक ड्रिल बांग्ला फायखे ताम खालायनाय बर'क ट्रेनिं प्रेक्टिस खालायो दे किसानखेखाय जेरै रखनो जेरैबो साफ्रन सिमिन' बांग्ला तामो फायखे ताम खालायनाय आबरक बर'क सोरोंफु इमार्जेन्सि किट रेडि दनिफु इमार्जेन्सि किट मानै जे जागा ओ हुजाखनाय खारै काटिनाय यगनाय अमहाय रेडि दनफुटा जापानि बर'कनिफ्राय थिक आसे हेंखे आर्ट क्वेक एलार्ट सिस्टेम बर'क सामुङाव थाबाबो बांला फायखायनि सायमानानि दायग' हेंखे बर'क समनि न डिजास्टार प्रिपेयारनेस ट्रेनिं बांला फायखे ताम खालायनाय ट्रेनिं बर'क खालायदो जत्त' बर'क नङा बर'कनि हाखतनि जापाननि

0: बाहा नंक बा आरोनी दूत सनाम जागो आबन लगी लगी गक्रक थक बसंग मानो आबन सिमी या नारक्रानी बुकुन नी सिमी सं दखई कलाई ताई कबूं ngo mani ro bosong mani mano bini broklo eba buni khol no simito sang kamang ma nathok nathok mani yak baisna mani sen nugo tai bono sogoi bo hangar srami mano sang apno kare tal सालब्रम नि सालो सामुगो सं बुनि बेलायनि सनामजा गुवाफ्रा तो सं हमनि न सामुगो फ्रांगै दङ आबन बांगि न भारत नि ओ नांकुकमा बथायनि हाबा हुकबार र ताई इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एबा सुख समाव काहाम खलाइमाव नारिग्रानि नांकुकमा सं नुगो सिनि भारतनि दक्षिण एबा सालगिरि फाइसिं अ जे हास्थेर तंग अब अ नारग्रा बांग्रतानि एबा कायथानि बेलाय जों नुगौ एबं अमनकायनि रां पुसारक आजमा जों सायमानो नारिकल तंग एन्टी अक्सिडेन्ट अम सुपार फुड होनि बो साखलाय जागो अर गोबांमा खनिज मालिरकबो तंग आबो सिनि बेखा थायनो गाहाम नारनान बागै ताय सिनि सागो बेमार कासुनानि फान्न बांग्रगो आबन बागिन तिनिनि सालो अ नारिग्रानि नांकुकमा कक्न पिन्ना बागै हाम ददंकिन हायंगो हायुं नारिग्रा सान्न जों पालालै दङ आसुजरा खनाबायखा नारिग्रा सान्न रगै हायं नारिकल सालानकै कक थाजा थायनि
1: फारिताबो खालायनो सा खामग्रानि कक सा खामग्रानि कक जों दिनै हार्ट एटाक गाहांकाय पुइला सति बा उयाखाबा सति दक्षिते सति चुकुचि कका पाँच मिनिट निसिमि साइट मिनिट निसिमि देर घन्टा जरा तामु खालायनो आं अबनति दिनै सा खामग्रानि कक खालायनो जिनि खाख्लाबनि देब्रा बोखागो खाख्लाब सिनजाकमा हाइके खाख्लाब साखा हिंके जों गोबांमा बरकनो जंग' आबो गेस नुखाबाय एसिडिटिं खोना हिनो दे आबोबाय बाक्सा कलम दैस्रा स्राङै फैका दे हामा थाना रहनानि नानानि देखदङै फैका आमदे हिनि जंग' हाइके आमदै नुगजा खाइकेनो जों जंग' आबो गेस एसिडिटि ओंखोना हिनो बाक्सा बिथि जावै बायो एसिड नि बिथि गेसनि बिथिरक मार्केटिं दाखुबखौ अम हायों खाहिंखे जों डाक्टि डाक्टिखे हासपाताल सेमातलांनाय तामो हिनमालाय हार्ट एटाक माने पुला सेकां एक घन्टानि सिम देर घन्टा जरा आबो बेलाय बेलायखे नांकुकमनि जरा आ हार्ट एटाक नाय बरकन मोथांनायनि बागै पुला सेकां जों तामो खालायनां तामो खालायमा जाया अबनति फेरेखिजा खोनालायनो हार्ट एटाक हांगिनो खाख्लाब साजाखनाय बेलायखै खाख्लाब सिंक्लोकमा हाय सेक्रबमा हाय ओंजाखनाय आबोबाय बाक्सा चंनाव आबो गेस नुखाबा एसिडिटिनि बागै सेंखनाय होनो आबोन बागै बाक्सा बरक एन्टासिडक जावैनाव फिया आबोबाय बरक थैनानि लामाव थाङै मानो बनि बागै दमुं खाख्लाब सिंक्लोकमा हाय खाख्लाब सेक्रबजाकमा हायखाखे साखा हांगिखाय कलम दै स्रा स्रा कि कलम खाइकाय सा केबेलङै फैखाय हेंकाय सास खस्थङै फैखाय हेंकाय बन आमतिङमा बाय बाक्सा

0: 아니 제라이카이 앞으로 안 고노 키비 카리 클랑마니 에 키비 카리 탕마니 테 방글라 파이마니 글리마나 하 글리마나 클리마 보 사이먼 갑레 아스케 키리마 합가 테 올로 4 5 버스 로모이 보루모 사이충 동나글리야 너거 사이충 동나글리야 암테 키리마 하비 타가
1: 사이마니
2: हेलो आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को
0: मारे किसी ने ताकू बखू या फाउट एक मिनट नजर आता हूँ शो नॉर निकॉल सामने तो नहीं क्या ना हेलो हेलो
3: उनका हाल
0: ताकू क्यों भाई आधा मिनट बीच में पाई लेकिन
3: नहीं
0: और अब मैं कॉक्स खाली तो उनका आधा मिनट
3: मन मन सीरीज़ কমপ্লেন খাই না কাঙ্কাই তো দা স্টেশন ডাইরেক্টর কালকামা পান্ডাদা না তো দা স্টেশন ডাইরেক্টর এফএম দেডি উতাম
0: আকাশ বানি আগরতলা কক ব্রক সেকশন মার নাইতা
3: গাবো কোন সালকামা পান্ডা তান্দাইয়া
0: আবো সালকামা পান্ডন হিনি নং সাইকেন পাই খাতি দামসা আপুরা টপিক
3: না না আর তো দা ডাইরেক্টর

औ हंके सिंह हजराव खनाता तो तंग शर चपुंग खना लाई चीनी तीनी नी खाने रचपुंग पांडा न चंग चंग लाई क्या हंके तबुक चंग चंग लाई नहीं एसएमएस नहीं नहीं बका ना हंके औरो हजराव एसएमएस सी हो नहीं खा अनिमुंग के देवर माँ कमलिंग

जोंहा जरावा खानिर जाबं पांदो खनालाय थंगुन रुखनि कय हरजाक र जाबं र हंगे नर ब जराव नर रुखनि एसएमएस गबां मन सख पाइ जा गंगे आ फायदो जराव नाय नै साबो तमसि हरका सि हनंग फुंका हम आं जों पुइ जलानि बिशुराय आं र जाबं खनानाय र जाबंनि कक थाय इंखा नंग न आनि खानि जाजाक मा मानिक ते बिपाशानि खरांग बाय र जाब जाक र जाबं न गंगे खनालाय नै बिनि खना तक जाक मानि र जाबं ग जराव सि हनंगा जों पुइ जलानि ताखौ बिशुराय इंखा फायदि खनालाय नै बिनि खना तक जाक मानि जामुंग तेजो तुम्हारे किचन शॉग नरो बोखना दी और खना तो तक रचामुंग 101.6 मेगाहर्ट्ज एफएम उज्जैन तो आज रो स्टूडियो आज उग्जा खानी रचामुंग पांडनों तो इधर ले आंग हर्जे बीनो ता गेनरोग निभागे और रचामुंग

आंगे जरा तो तुरक तुरक थांगे दंग फैदे जरा एस एम एस नई सबदा मसी हेल्का हाय सिस्टर आं रिपन देवर्मा मानदनी संग नि मूंग हेलो हेलो फैदे दो फाया था तंगे संग बाय विप्लबेन रेहला देवर्मा हिनी से जैक फेबा ओ रचाप मूंग कैसे तो तंगसा तो मानखा ओ रचाप मूंग दाखुक विद्या जमातिया ते बुखुक आशा देवर्मानी खरंग बैकेट चाप जाखा खाई और रचा मूंग सहरखना ओंकाय आं संगानी दादा बुदिराम बिहिक बाचुनो डेडिकेट खाई नि मुचुंगो ते बो डेडिकेट खाइया बीनी सिस्टर इन लो एबा बीनी बोब्रां जुगनो ओंकाय खोनालायने हजराव फाय हेलो हेलो फायदि फायता तंगदी और रचा मूंग दाखुक रिपन खोनाना हिनी कय हरका मानदायनी ओंकाय खोनादि दाखुक रिपन हिनी खोनातक जाकमानी रचा मूंग तेजो तुम्हारे किचिंग संग नारंगो खोनादि ओखनाता तो रचा मूंग।

नायदे नायदे जराबाय थागोन अफाय सबायखा ओंखाय एसएमएस थ गोबां मोन अफाय जा ओंखाय रोजाबमुंथ' जतनि खानानै मोनग्लाखा ओंखाय अजाराव सिहनायखा आनी सिनिमुं सादन देव बर्मा आनी कामि हिंगे तक्सा कामिनि आनो ना सिंगे दङ उषा जलायबाय रोजाब जाग अरजाबमुं खानानैनि कय हरखा ओंखाय ते खरकसा सिहनायखा फुंखा हाम बुखुखा आं खय जा पावारनि अजित देव बर्मा कय हर बिसनार बाय सन्जिता देव बर्मानि रोजाबमुं तांसा खोनारदि रोजाबमुंनि ककथायखा हामजाखनाय हामजाखनाय अर जाबमुंनो खोनारि दे हिंगे फियाबा अर जराग्रिनि बागै आं खोनारि मानग्लाखा ताखो खजित नरकनि हामजाखमा चिनि खातुङो पान्दाव नोनां कयनाय कक दुख्लायनायनि बागै हिंगे ते खरकसा सिहनायखा बायनो दिबर काहा मां हेजामारा कामुक सरानि आनि मुं फलु देव फुलु देव बर्मा रोजाबमुं खोनाना हिनि कय हरखाब ओंखाय फियाबा ताको मानिक देबुखु बिपाशानि रोजाबमुं खोनाना हिनि कय हरखा फियाबा आं खोनारि मानग्लाखा जराग्रिनि बागै हिंगे ते खरकसा सिहनायखा फुंखा हामबाय जितेन साहर काब बाहायनो रोजाबमुं खोनाना हिनि फियाबा बिनि रोजाबमुंबा आं खोनारि मानग्लाखा जराग्रिनि बागै आं सानाय हायनावहाय नरकनि हामजाखमा चिनि खातुंमा पान्दाव गोरोंगै रोजाबमुं खोनानानि बागै हिंगे ते खरकसा हायनावहाय सिहरखा यां बुइलानाव मेमनाव फुंखा हाम आनि मुं हिंगे सन्दा पारा विश्रामगंजनि बबाहायनो रोजाबमुं खोनाना हिनि कय हरखा बुखु कुसा तै ताखु बिमलनि खाखोमाव रोजाबमुं फियाबा जराग्रिनि बागै आं खोनारि मानग्लाखा ओंखाय जों खोनालायनाय अजराव दासिंग सिहरनाय ताखु सादन नासिंगि दङ अरजाबमुंनो अरजाबमुं खोनालायनो जों चिनि दिनैनि खानि रोजाबमुं पान्दानो जों बायनायलायसिनो ते स्राबसानै आगोलो नारो खोनाय मानाय थुमनु फियाबा पान्दा बाया सातजना लगि दंदि खोनाय दंदि चिनि पान्दानो सारा जा पॉइन्ट डग मेगा हार्स एफ एम उजेन्तनो ट्युन खाइ दंदि इनका जराव नासिंगि दङ अरजाबमुं

0: भाइरग्याखौ आता थाराथेबासो दायसाखाय आबरक सपायबायनायसै
1: सुरनखाय फायाखो
0: भाइ दंफु सपायनाय आता थारा दामो निनि नखला नखबारि रग फारजायगिया बुसुक बालखोनो
2: सोंदि दैसाखा हामखाय सोङै नायग्रादि गैयाजालाय निनिनि ता साफ सुथ्रा दंनायन
0: आमो तामोनि बागैयासोखाय बुंखि टखि वाखि तै मिसखुरग रोजाथाय दंबायखाबा नि नामोबा मोजां सुख्लियाब्लासो
1: नखला बिनि बुमुंसे नखला नखलाबा गुरुंनाय न्युता आरो मोजां ना मोजांया कक कासैसेमानिया
3: आता थारा निनि नखला नखबारि रगबा आमो तामो मानि क्लायख्या ओह अमले किसायाग लायख्या
0: हाइफा न आबो तामोनि बेयांनि आसुक बाहाय सिद्रा फायखाबा
1: खोनादो गया कक रग नंनि नखला रगले बुमुति जानि बङै दंबायख्या अर फाय आथार फाथार कक सावै दंबाय हा
3: दंग्रा दि आता थारा जिनि नखला रग जेसपान अंगै दंग्राथों ताबुक सिनि सुपारभाइजर संफायनाय फायके बरक न बर आसुग्रनाय आबसा सखां सागरादि
1: इकुले सेर खुनि कारजों नुगेदा फायके अर न आसुग्रि वनता अंगलग दिबा
0: नि नि आ सेर लगले अंगियाता आबो केयार न सोलै तखा हायदा आमर तम नांबायखे थायबुं बेलंतिदा तामर नांबायखाबो आबर जेसु खुपा न काखरुइ मानसिने हायदा
3: हायपाले आबो तामनि आसुके कसमबाय कसाकबाय ब्ला ब्ला जाहुइ मेरें खेरां अंगै सिमुक गसुगै दंबायखाबा
0: सिमुक गसुगै मेरें खेरां उंमा सिमिया नर बिने आसियार न दाङै जानाय बेखा दाङै सेनाय बे ग्रादि थांनि दामो जानिबो सराबे सराबे रक बोंजा
3: हाइपानो आता थारा नि नमो बुन्यो सलिया किसै याक न लाइमानि क्लाइखा फिया निनि नगो लामथाय रक कांसस पानो करिदा
1: दङ लामथाय बा तामो करिङना सा आंखाय अफिसार रक बा सियारो नासुखथु हनि सामानि ता तामो जायादि बाचार आसुखा आसुखा
2: बिन आलाम थाइबो नायथावलांमानि किजि गोब्लारि रगबाय थाबजां मानसि नर किसा गारि उइनाय बेगेनारामबा सायमानबायानो
0: अ गोब्बा इ क आबर सपायबासि दंबायखेब्लासो बिनि लगिन आबखाय बिग दांखाना तामो
1: बिहिंन बरक बुखुंनैन फायनानि क
3: रिग नाय कानै फायमानि आबले मोसां सुखमानि नखलायख्या अफिसार रंनि बिहिग होनमाबा बुरिबो बुरिनता
0: हाइनसे बुरि नायथ आरो नि बिसिं रिगनायबो नायथखेंखायबा बेलाय नंखाथो
1: फायदि सार खुलुमखा मेदाम फायदि वाइसन नक बिसिङ न फायै आसुक फायसिदि सार थांदे ऐ सुरन नंगौ मादां साखानि लामथाय गारिबै बै रिगलाला
0: उह अमरतामनि आसुखे हादलि गबुसाय दंखाबासिन न मेदाम बुखुं मुथुबो गिजा दंग्रा दे सार नोंबो बुखुं गिजा मुथुबग्रा दे
3: अमो बेलानि अंगै दंखाब्लासा होनो लामथाय होनैबा अमो लामथानि दो सलै दंसिबा
4: दा क दंबायग्रादि तेरक तेरक हानो कमनि थांबायानो
5: अनक बो तामनि आसुक मोनाकनि कुंजाकसा होनो हकु बबियांनि आसुखाय कुबुकसाय तंख
2: ताबुंनो माइमुइ संबायै थाबानि हसुनारकन बोथारै कारिउइ काबुबाय मानिता आबुनि बागै हकु दुमै दंग्रा खाता ताबुंन नखरि थांबायानो
4: बासै बेलाय केपालि आंनि दंखाता हायादा निनि बोखानाय रगबो बेबाग न थाब्ला बलजागै दंबायखाब्लासा होनो
5: ओंखोना नता बासै आनो तैसिखिसा खार' फायग्रा दि तै गांगै दंखा
2: दंग्रा दि आकन आं तै नाहारि फायग्रा ना
1: हाके सुरन नोंथां दि गान्धी नगर थाङो आरो आ बाका सागानि बुतुक तुक नुइन कारिबुइ समैरि फायग्रा दि
2: मेडाम हिन्दीखाय दै नोंनाखाय लतारक सुजागे बालुक सुखबायखा सालफायके सामं पायलाया लतारक होनानि जरासे मानलियो
5: बासै निनि अ लताबा तबलु खामसैबो तैहायन उंगै दंखाब्लासा
2: आव मेडाम बुइरंन अ लतारक बाय तैरक खारिनान सुदुसे तुमारक बाहाय उंगै दंसिओ
5: उह खारमा बमु बेलायन उंगै दंखाब्लासो हिन्दी दंग्रा दिबासै ताबुक नोंग्रालिया उलतै स्राबसा तंगै नोंसिनो ओइ नोंयांगो किसा फायग्राला
4: तामसा
5: हिन्दी थांलायसिनाय आंले अरतै दंगै मांग्लाखा तामरकबा आसुक खाद्रों बाद्रोंगै दंबायखो नकनि खरमाय रगबा वाइसा फानसि बुप्रा जागियाना लाला लिलिं हाइनसि बुदुल बादाल क्राइ दंबायो हिमसिदि नगो थांगै पाइलायमा जासिउ निनि कक दंखाय दायति पाइदि थांदि
4: दंग्रा दाको हाइपेले ताबुकसे फायमानि कक रगसिमि फानो पाइलायग्रा नाता ए आता सुरन नों किसे यांगो फायग्रा दि
3: तामो सार
4: खनाग्रा दि आता सुरन

खनाइथ्यौँ गो सारा सबै डक मेगा हर्स एफएम उज्यान तजर स्टुडियो आसुक जका गार्ज बिनता हंके संग तबुक दल बिदल पांदा न चेंग चेंग लाइने गासुक जत तिन रखना बाइकना थुमनु काकलाय न रख जत न खना वे खातंग कना तंग थोकना हेने हंके दिबोनी दाम चिनी तामै सती बाची अंजा खजराव हंके जो न रख जत न हाइनो हाय लामशग दिबोर काहाम तिन रखनि तिनि निशाल जतनि बाकिनो काहाम लाइनानि अंतुन हंके सानामुचुंगो जे सामुंग हुमुंग रख तिनि खलाइनानि हिनि जोंजाक एबा खलाइ दङ जतनि सामुंग न जानानि अंतुन अहंके दाल विदाल पांडव चंखनालायो दाल विदाल रचापुंग रखायदा कपरक हिंदी सफलजाक रचापुंग चंखनालायो हंके फायदी अजराव बेलाइनो खना ततक रचापुंग नरकनि बागे चंखनालायने हंके खनायतुंगदि लगितुंगदि पांडा पाय साखजरा दिपुरनि धामनि तामै सति थामजि जरा नरकनि गजारांग तंनाय अखना ततक रचापुंग नरकनि बागे खाखलाय नरक जतन खनातक जागाने अ रचापुंग न

0: फायदे हनो हाय अजरव ककदुगो सबतों नायने ककदुगे सके नायने ककदुगो सबतों हेलो हेलो
1: हेलो
0: आ परिका साइतो मतार गलन द दीपक हाम लामसगनो न बोर जाबं खना नायसादि आ
1: खनावना
0: 1976 कासा बय फकीरा बयबो फकीरा ओ लाका नंगो प्रेपिसो कुमार तबो गदानि तो तोता मेना की कहानी या भाई तो तोता मेना की कहानी ना द तोता निभागे द तो बेले हम बाय कोक तो दिक्रमा बागे आ मंखा फकीरा तो केनी रचापुंग तुता मेना की कहानी और रचापुंग नो के खनालाई ने बिनी खनातक जाक मानी रचापुंग जरा ता सक कबांग तो क्रिया गए है दा गए और रचापुंग बुको कोनिका ते जो तो खनाई तो नहीं ताको बुको मारे के चिंशों नरोकनी बागी बो और रचापुंग नरोकनी हम सक मा चिनी खतों मा पांडा ओ खनाई तो दी लोगी तो दी पांडा पाया शक जरा दी बोली दामनी थमी श्रुति थम ची जरा नरोकनी कचरा अंग तो नहीं इनका जरा वासुक जगंग आर्जे बीनोता

0: हाउदाबुग्लेन आरो चापमुं खोनालायदे पाइथागु नजारा फायसबाय गया पाइथाकक दुगिया साखनाय आं नरकनि हामजाबमा चिनि खातुमो बान्दानि पाइथाक साबनि रे चापमुं खोनायमान कक दुगिया साखमानि यागलो ना साइमानाय हायदा के कक दुगिया साखनाय हेलो
1: हेलो
0: दिपर काहाम लामसगो
1: दिपर काहाम बाय
0: द सिनि मुनि गरे साबंका
1: आबियां गोइं फन एसान
0: एसान ना द बर चापमुं खोनानाय सादे
1: इको राजा हिंदुस्तानि बाय
0: राजा हिंदुस्तानि नि बर चापमुं
1: ना हसे माने को राजनीति ने रिसर्च जक बाय
0: हां
1: इको जेबतांग से दे बाय
0: जेबतांग से नै ना दो के बेले हम बाय को तो तिक्रम बागे आओ के राजा हिंदुस्तानी तो केनी जेबतांग से रो चाम खाना नहिं कोइ हरका ताको केसन गयामफांग नि गयामफांग तो तो तै को तो क्लाय हरका हंकै जिं खाना लायनै राजा हिंदुस्तानी नि जेबतांग से रो चाम के bo rechapung no khanara nai rechapung to kobang mona tongo enke rechapung no khanala isine enke rechapung khanala ino chini tinini narokni hamjakma chini khatomo pandano jeng pari la isine enke jotono logi tongdi khanai tongdi panda paya shak jara no ga rechapung narok jotani bage enke takoge sen khanadi nini khatok jakmani rechapung

0: चलना यूं ही साथी
1: है बंधी मुट्ठी लाख की हर खुली तो प्यारे खाक की
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी
1: हर बंधी मुट्ठी लाख की हर खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे, दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे।

जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। आ

कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई। लगभग 5000 लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा, अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1127 हो गई है, जबकि लगभग 4900 लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा, ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी।

0: विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए CEO एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोप के बाद CEO के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। CEO के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया।

0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले दो दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
2: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उपमुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं। इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जाँच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: बंबई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 6 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने आज कहा कि उचित और ठोस जांच के लिए मामला CBI को सौंपना आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्र

साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रेमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ही पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदंबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हुई। लगभग 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक $136 अरब का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र सिक्किम विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।